0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
3: City FM 89
1: on the dial. You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
2: Trending today.
4: Prime Video and Sony Pictures are closing in on a series order for a live-action TV project based on Marvel Comics' famous Clone Saga storyline. According to Deadline, the upcoming series will center on Spider-Man clones, Ben Reilly and Kane Parker, as part of Sony's universe of Marvel characters.
5: City 89.
6: Naya Pond's body lotion, jisme hai 100 tola gold. बस पोर्टल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
7: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो।
8: हटो पीछे, भागो।
9: अहमद, हटो वहाँ से।
10: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं। समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
11: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
0: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: non-stop hits.
12: No talk. Just you and the music.
13: Back to back starts now.

0: 89
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
2: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
3: देयर आर कॉन्सर्ट्स कराची एंड देन देयर इज अ सज्जाद अली नाइट अंडर द सिटी स्काई. Eventis is bringing the ultimate maestro to the City of Lights for the Legacy Tour. And honestly, the nostalgia is going to be off the charts. Whether Cinderella defined your school days or Bolo Bolo is still your top road trip anthem. This is the one concert you cannot afford to miss. Mark it down, Sunday, October 18th in Karachi. City FM 89 is proud to be your official exclusive radio partner. Tickets up on ticketwala.pk.
4: City FM 89, we're playing your song.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10 a.m.
2: City FM 89.
3: Trending today.
4: Prime Video and Sony Pictures are closing in on a series order for a live-action TV project based on Marvel Comics' famous Clone Saga storyline. According to Deadline, the upcoming series will center on Spider-Man clones, Ben Reilly and Kane Parker, as part of Sony's universe of Marvel characters.
5: भागो अहमद हटो वहां से
6: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम लें सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध
7: नया पॉन्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड बस बॉटल को स्कैन करो स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका नया पॉन्स बॉडी लोशन स्किन और किस्मत दोनों चमकाए देखा ना मिरेकल्स हैपन
2: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
0: यू आर लिसनिंग टू
2: नॉनस्टॉप हिट्स
8: No talk. Just you and the music. Back to back starts now.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 11 a.m.
3: City FM 89.
4: Trending today.
5: Prime Video and Sony Pictures are closing in on a series order for a live-action TV project based on Marvel Comics' famous Clone Saga storyline. According to Deadline, the upcoming series will center on Spider-Man clones, Ben Reilly and Kane Parker, as part of Sony's universe of Marvel characters.
1: City FM 89.
6: Naya Pond's body lotion, jisme hai 100 tola gold. Bas bottle ko scan karo. स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका नया पॉन्स बॉडी लोशन स्किन और किस्मत दोनों चमकाए देखा ना मिरेकल्स हैपन
1: सिटी एफएम 89
2: योर ड्राइव अलोंग कंपेनियन
1: योर लिसनिंग टू
3: नॉन स्टॉप हिट्स
7: नो टॉक जस्ट यू एंड द म्यूजिक बैक टू बैक स्टार्ट्स नाउ

0: along your song.
1: Only on City FM 89.
2: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
3: Pakistan bhar ki tarah Karachi mein bhi Shaukat Khanum Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahunga ki aap apne tamam test Shaukat Khanum Lab se karwaye aur Shaukat Khanum Karachi ki takmeel mein apna hissa dale. Shaukat Khanum Lab se test Shaukat Khanum Karachi ki takmeel.
4: जरा बहन, जरा बात तो सुनो।
5: हटो पीछे, भागो।
6: अहमद, हटो वहाँ से।
7: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं। घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
8: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
0: City FM 89. We're playing your song.
9: There are concerts, Karachi. And then there's a Sajjad Ali night under the city sky. Eventis is bringing the ultimate maestro to the City of Lights for the Legacy Tour. And honestly, the nostalgia is going to be off the charts. Whether Cinderella defined your school days or Bolo Bolo is still your top road trip anthem. This is the one concert you cannot afford to miss. Mark it down, Sunday, October 18th in Karachi. City FM 89 is proud to be your official exclusive radio partner. Tickets up on ticketwala.pk.
1: You're listening to
10: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
11: That was Manu with Ronnie. I really like that song. It always makes me smile. Up next, another throwback for today. I would consider this very good weather music. Here is Lloyd and Lil Wayne with You.
12: It's a major move right here, baby.

0: to your song.
1: Only on City FM 89.
2: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
4: Coming up next.
1: Non-stop hits.
2: City FM 89. We're playing your song.
5: Trending today.
6: Prime Video and Sony Pictures are closing in on a series order for a live-action TV project based on Marvel Comics' famous Clone Saga storyline. According to Deadline, the upcoming series will center on Spider-Man clones, Ben Reilly and Kane Parker, as part of Sony's universe of Marvel characters.
2: City FM 89, we're playing your song.
7: Azra Behen, zara baat to suno.
8: Hatu piche. भागो
7: अहमद, हटो वहां से।
9: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
10: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप अपने तमाम टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें। शौकत खानम लैब से टेस्ट, शौकत खानम कराची की तकमील।
11: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमे है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
12: You're listening to City FM 89.
2: We're playing your song.
13: No talk. Just you and the music.
14: Back to back starts now. Nothing like